इतिहास की शुरुआत आग से हुई। आग शक्ति है, आग जिंदगी है, तुम सब में एक चिंगारी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो बुराई पास आएगी जल जाएगी, जो पाप करीब आएगा जल जाएगा। तुम सब शोले हो।

तत्र खलु इमानि अष्टौ आहार विधि विशेष आयतनानि भवन्ति अनि आयुर्वेदं चेप्तोंदि. अंटे आहारं अनेदि केवलं फुड् कादु, इट्स अ पर्फेक्ट बैलेंस. देश कालमान परिस्थितुलु, प्रकृति, दानि पंडिंचे विधानं इवन्नी कूडा तोडवुतायि. अला चूस्ते मन रूट्स फार्मिंग लो उन्नायि, बट वी मूव्ड ऑन. स्टिल मन मनसुलु पच्चनि पंट पोलाल्लो चिक्कुकुपोयि उन्नायि. सो लेट्स गेट बैक टू अवर रूट्स विद वीवीएफ एक्टेक आईएनसी. पल्लेमारी फार्म्स बिलीव्स दैट फार्मिंग इज नॉट बैकवर्ड, इट इज द फ्यूचर. VVF Agtech Inc. is your calling for farming. Palembari.